0: लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
1: भक्त

0: इसमें है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: की छत पे चढ़ी।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
3: कुछ सुनाएगा नहीं
4: तो के है ही नहीं।
3: अच्छा जे मैं कहा फिर सुनाए।

0: शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा

0: legends and we out.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 में रेडियो DS।

0: दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की बूंदाबांदी में। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस पर आपका फेवरेट कार्यक्रम।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
4: गुड मॉर्निंग सर।
5: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका?
4: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर, मोनिका।
5: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: सर गाना सुनना है दिल जब किसी की तरफ झुकने लगे, आंखों ही आंखों में बात होने लगे।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: बाबू खान।
0: बाबूलाल जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?

0: हेलो सेवन।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर, चाहते हैं आप।
1: हेलो
3: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू के राशि।
2: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
3: सुनो सजना पपैया ने।
2: जी बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी चॉइस पे बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कूल के धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: अमन मीना।
1: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी नशे कॉलोनी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हेलो,
0: डेढ़ सौ बजाओ तार में।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर।

0: हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका।
0: जी मेरा नाम अक्षत है, गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: अक्षत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: गाना है जीने भी दे दुनिया इल्जाम ना लगा।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी वॉइस का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नमस्कार ऋषि साहब, रतन लाल भूषण कलाते।
1: रतन लाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आप? आलम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई थी।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी वॉइस का बेहतरीन सा गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: गंगापुर सिटी।

0: के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका?
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: पता है गुलशन जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बड़ा सुहाना है आज मौसम मेरे शहर में बरसात है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
4: हेलो हेलो
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं।
5: आरबी गुजर।
4: आरबी जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: गंगापुर से बोल रहे हैं और गाने के बोल है कि रब्बा जानदा।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी प्रमेश कहेगा।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: नमस्कार दोस्तों रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है स्टूडियो नंबर 6 3 7 8 0 2 4 7 5 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें क्या चल रहा है आज कौन सा गाना बजवाना है बोलिए

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम जय किशन है।
1: जय किशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं गंगापुर सिटी, मैं जीआर गारमेंट्स।
1: बताएं जय किशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: सर? वो गाना है आप फूल में भेजू पर पता मालूम नहीं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी प्रवेश में बेहतरीन सर।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंश कुमार माली,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अंश जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: यार से जिंदा कर दी है,
0: कौन सा?
1: यार के जिंदा कर दी है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: क्या कर रही हो?
1: बस बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे थे हम। आपने क्या कर रखा है अभी? अच्छा पास्ता खा रहे हो। आपका नाम बताओ पहले।
0: किट्टू।
1: किट्टू जी, आप इतने दिन से कहाँ चले जाते हो? कितने दिनों बाद कॉल किया आपने रेडियो में?
0: मामा आंटी।
1: मामा आंटी चली गई थी क्या? क्या क्या खा के आए मामा जी के वहाँ? हेलो,
0: बाटी।
1: अच्छा दाल बाटी खा के आए हो? बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज रेडियो से?
0: हुए ऊपर।
1: ठीक है, सुना रहे किट्टू आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: तो वक्त हो चुका है 11 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों अभी आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी नमस्ते सर।
3: नमस्ते,
2: नाम बताएं सर आपका।
3: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कर रहे सर जी।
2: नमस्कार रूपचंद जी, आपको और आपके सभी सुनने वाले मित्रजनों और परिवारजनों को

0: सवाई माधोपुर में अच्छी बरसात हुई है शाम को।
1: काफी जिलों में हुई है, हमारे इधर अभी नहीं हुई है सर।
0: हाँ बिल्कुल जल्द हो जाएगी सर। बताए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गीत सुना, पिक्चर का नाम है नागिन
0: जी,
1: और गीत के बोल है तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा।

0: गुड मॉर्निंग सर जी।
1: जी गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
0: सर जी जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: कैसा शर्मा जी, कैसा मौसम है जम्मू कश्मीर का?
0: सर जी बहुत सुहावना मौसम है, सुबह भी थोड़ी बारिश हुई तो कल से मौसम थी, कल दोपहर को गर्मी बहुत थी लेकिन शाम से मौसम बहुत ठंडा है, अब सुबह भी बारिश हुई है थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहावना है जी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: सर जी? आज मुझे सुनाइए फिल्म जैसे को।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सूरज सैनी।
1: सूरज सैनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे आवाज़ के जो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से ये गाना।

0: होता है सर आपका?
1: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
0: महेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी जी आर गारमेंट।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है दिले बेताब
0: जी।
1: पहले प्यार की पहली बरसात है।
0: सुना रहे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
3: हेलो सर, राधे राधे।
4: राधे राधे, नाम बताएं सर आपका।
3: आसाराम जागा सर।
4: आसाराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
4: बताएं आसाराम जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं।
4: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के बाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: पूनम।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहूँगी?
0: शरारत।
1: कौन सा मैम?
0: शरारत है।
1: शरारत हूँ। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगा पंचायत।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एक तू ही अपनी सी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: हेलो

0: हेलो, जय श्री राम मैम।
1: जय श्री राम सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम गुल्लू वर्मा, श्री राम से बोल रहा हूँ मैं, गंगापुर सिटी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे? सर
0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बालाजी का भजन चला दो मैम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अंकित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हमदम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: शिवानी।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ मैम?
0: गंगापुर सिटी।
1: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तू जो मिलिया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: दर्शन रावल का है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: कोमल,
1: कहाँ से बात कर रही? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिद्धि।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: ले जा मैं की रात में चुरा के सारे रंग ले जा।
1: ओके मैम, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: आपका?
1: नीरज गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सिद्धू मूसेवाला का 295।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: कल्पना। हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कल्पना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चांद सितारे फूल और खुशबू।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? सुनना पूछूंगी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: ईशा सॉन्ग।

0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आए जमाने के सर पे तेरे सुनने के लिए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
2: अच्छा इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं, ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: आजाद खान चौहान मिला।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: थोड़ा जल जल जल से सुनना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी नाम क्या है आपका
3: मनी
2: कहाँ से बात कर रहे
3: नसिया कॉलोनी
2: कहाँ से सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: काम मैं आप बनूंगा
2: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर

0: हेलो।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: फिल्म का नाम है कलाकार
0: जी।
1: हाँ, आजकल यहाँ पे बारिश पड़ता है सर।
0: अच्छा, कश्मीर में बरसात हो रही है।
1: हाँ, बारिश पड़ता है तो सुबह से यहाँ पे बारिश था, अभी मौसम ठीक नहीं हुआ सर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी सर बूंदाबांदी चल रही है अभी। सवाई माधोपुर में कल बारिश हो गई थी शाम को, और हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में बूंदाबांदी है और छाँ हो रही है अभी। मतलब ठीक ठाक खुशनुमा मौसम है।
1: हाँ, यहाँ भी खुशनुमा मौसम में बारिश गिरते हैं।
0: चलो बहुत अच्छी बात है सर, प्रकृति सबको राहत दे गर्मी से। और सुना रहे हैं आप काफी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS89.6 शहर की धुन, शहर का नया मैजिक. रेडियो DS89.6.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का. मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना. दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5. दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5. दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए.
0: शहर

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: नॉट गिल्टी डालन वही वाला।
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: नीरज।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नॉट गिल्टी डालन वाला।
0: हमारे आपकी फरमाइश पर ही

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: रितिका शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: वेपन।
1: कौन सा?

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आशु वर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: ठीक।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अरे मैम, ये आप सर से बात कर।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशीष।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक।
1: कौन सा?
0: एक।
1: इक्षा।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका रेडियो दूसरे रिसीव ना दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी ही देर बाद आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ। चलिए आपके इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और लेकर हाजिर होता हूँ आपका ये प्यारा सा नगमा।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का. मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना. दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने.
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर.

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: सुन रहे हैं यादों की सरगम यानी बीते लम्हों की मधुर आवाज।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
3: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
4: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऐसे मिना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा।

मोबाइल फोन के फायदे और नुकसान 30 मिनट का लेक्चर निबंध। नमस्कार मित्रों, आज हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है मोबाइल फोन। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी आखिरी बार फोन ही देखते हैं। आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ एक संचार का साधन नहीं रहा, बल्कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साथी बन गया है। आज इस लेक्चर में हम मोबाइल फोन के फायदों और नुकसानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लेक्चर लगभग 30 मिनट का है। 3-4 मिनट। मोबाइल फोन की शुरुआत 1973 में मार्टिन कूपर द्वारा की गई थी, लेकिन स्मार्टफोन की क्रांति 2007 में आईफोन के साथ आई। आज 2026 में दुनिया की लगभग 90% आबादी मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है। भारत में तो ये संख्या और भी ज्यादा है। मोबाइल ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन क्या ये हमारे लिए पूरी तरह फायदेमंद है? आइए पहले फायदों की बात करें। भाग दो, मिनट एक, संचार में क्रांति। मोबाइल फोन ने संचार को बेहद आसान बना दिया है। चाहे आप देश के किसी कोने में हों या विदेश में, एक क्लिक पर परिवार और दोस्तों से बात हो जाती है। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, फेसटाइम जैसी सुविधाओं ने रिश्तों को मजबूत किया है। आपदा के समय में मोबाइल फोन जान बचाने वाला साधन बन जाता है। दो, जानकारी का खजाना। आज इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन एक चलता फिरता विश्वकोश बन गया है। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, हर सवाल का जवाब सेकंडों में मिल जाता है। छात्रों के लिए ये वरदान है। ऑनलाइन कोर्स, लेक्चर, ई बुक्स सब उपलब्ध है। गरीब से गरीब छात्र भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीन, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। कोविड-19 महामारी में मोबाइल फोन ने शिक्षा को जारी रखा। जूम, गूगल मीट, यूट्यूब पर लाखों बच्चे पढ़ाई कर सके। ड्यूओलिंगो, खान अकेडमी, अन अकेडमी जैसे एप्स ने सीखने को मजेदार बना दिया है। चार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। UPI, गूगल पे, फोन पे ने पैसे के लेन देन को आसान बना दिया। बिना बैंक जाए पैसे भेजना, बिल भरना, टिकट बुक करना अब सेकेंडों का काम है। खासकर गाँवों में महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हुआ है। पाँच, मनोरंजन और तनाव मुक्ति। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गेम्स, मोबाइल हमें कभी बोर नहीं होने देता। लंबी यात्रा में, बीमारी में या फ्री समय में ये हमारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। 6 पॉइंट, स्वास्थ्य और फिटनेस। फिटनेस बैंड्स, हेल्थ एप्स, योगा वीडियोस, मेडिटेशन एप्स ने हमें स्वस्थ रहने में मदद की। डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श, दवाओं की जानकारी सब आसान हो गया। 7, नेविगेशन और ट्रैवल। गूगल मैप्स ने हमें कभी रास्ता भटकने नहीं दिया। ओला, उबर, ट्रेन, फ्लाइट बुकिंग एप्स ने यात्रा को सुविधाजनक बनाया। 8, व्यवसाय और रोजगार। छोटे व्यापारी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस से अपना कारोबार चला रहे हैं। फ्रीलांसर घर बैठे काम कर रहे हैं। भाग 3, मोबाइल फोन के नुकसान। 12-13 मिनट। अब आइए उसी सिक्के

0: सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते घंटे निकल जाते हैं। पढ़ाई, काम, परिवार सब प्रभावित हो रहा है। 3 सामाजिक अलगाव, परिवार में सब फोन में व्यस्त रहते हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, बच्चे माता पिता से कम बात करते हैं, फेस टू फेस बातचीत कम हो गई है। 4 गोपनीयता और सुरक्षा, साइबर क्राइम, फिशिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गए हैं, बच्चों पर ऑनलाइन खतरे, ग्रूमिंग, एक्सप्लिसिट कंटेंट बहुत ज्यादा है। 5 मानसिक स्वास्थ्य पर असर, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर डिप्रेशन, एंजाइटी और हीन भावना बढ़ रही है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एक आम समस्या बन गई है। 6 पर्यावरणीय नुकसान, मोबाइल बनाने में दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल होता है, बैटरी और पुराने फोन का कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है। 7 दुर्घटनाएं, सड़क पर फोन चलाते हुए वाहन चलाना, ड्राइविंग वाइल डिस्ट्रैक्टेड, हजारों मौतों का कारण बन रहा है। भाग 4 संतुलित दृष्टिकोण और समाधान। 3-4 मिनट, मोबाइल न तो पूरी तरह अच्छा है और न पूरी तरह बुरा, ये एक औजार है, समस्या इसके दुरुपयोग से होती है। समाधान, स्क्रीन टाइम लिमिट रखें, दिन में 2 घंटे से ज्यादा न करें, नीली रोशनी फिल्टर इस्तेमाल करें, फोन फ्री जोन बनाएं, खाना खाते समय सोने से 1 घंटा पहले, बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाएं, जरूरत से ज्यादा महंगे फोन न खरीदें, पुराने फोन को रिसाइकल करें। निष्कर्ष, 2 मिनट, मित्रों, मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को आसान, तेज और जुड़ा हुआ बनाया है, लेकिन ये हमारी लत और लापरवाही से हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और समाज को नुकसान भी पहुंचा रहा है। हमें इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उपयोग करो, दास मत बनो। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप से और अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: दोस्तों अभी आपने सुना नए तराने कार्यक्रम, दोस्तों 2 बज चुके हैं, लेकर हाजिर होऊंगा थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम भूली बिसरी यादें।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: दोस्तों अभी आपने सुना नए तराने कार्यक्रम से लेते हैं विदा और चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, भूली बिसरी यादें। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: दोस्तों 2:20 का समय हो चुका है। फिलहाल आप ऐसा ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना

वापस तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: म्यूजिक बंद हो गया बस चलो पीछे चलो
2: तुम अच्छे लड़के हो अबीर मैं भी अच्छा हूं पर तुम शुरू से अच्छे होगे मैं नया नया बनाऊं ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा हूं वरना भूल जाता हूं

0: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: शादी है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: डीएस साइंस अकेडमी माध्यमिक शिक्षा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
1: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।

वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: अमित शर्मा। ये शुरू हो गया?
2: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: नसिया कॉलोनी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: डोप शोप, हनी सिंह का।
2: कौन सा सर?
1: डोप शोप।
2: डोप शोप हनी सिंह का?
1: हाँ।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कौन

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम हमारा बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फिल्म का नाम है आक्रमण और गाने की बोल है ये मौसम आया है कितने सालों में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ
1: आरबी बोल रहा
0: से बात कर रहे हो?
1: हूँ, गंगापुर से। और गाने के बोल है, ए दिल लाया है बाहर।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: मेरा नाम पायल जागा है।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ मैम?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ये तेरे में करंट से छोरी तो छोरे पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: वंदना।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ऊर्जा का लेखावा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कितनी सॉन्ग?
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नाम क्या है आपका?
1: जी मैं आपका जाना पहचाना।
0: हेलो
1: आपने इंग्लिश आदर नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो तोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति की मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और रेडियो कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: आज एक गाना आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ।
0: जी
1: व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? करूँ क्या डायल नंबर? व्हाट इज योर मोबाइल नंबर?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: नाम है तेरा तेरा।
0: ओके, मैम सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नितिन।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: मिर्जापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: दो खटोला।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी सर।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम बिल्कुल है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: नसिया गलानी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: हाँ,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: मासूम शर्मा का एक कट।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हिमांशु।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ प्लीज।
0: और कितना सुना रहे हैं आप? कुछ

89.6 पे रेडियो डीएस हर

0: अरे भाई तो बोलपट गाना खत्म हो लिया।
1: अच्छा राम राम दोस्तों, तो हमारा गाना कैसा लगा कर लो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और वत्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, गाने को लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।